0: जय श्री कृष्ण।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मनसा वाचा कर्मणा वाणी थी पण हिंसा न थाय, कर्म थी पण हिंसा न थाय, मन थी पण हिंसा न थाय, एवो अहिंसा नो भाव मन नी अंदर जागृत होवो।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

हाय फ्रेंड्स, रेडियो पालनपुर 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आपनो हार्दिक स्वागत छे। दिल तो बच्चा है, चलो फरी उमरना ये पड़ाव नी वात करिए। जब बाळपण ने घड़पण वालू लागे, घड़पण ने बाळपण पण वालू लागे। नानू बाळक तेना दादा दादी के नाना नानी साथे जे यादगार पळो वितावे छे, तेवी पळो भाग्ये ज मां बाप पोताना संतान साथे वितावी शकता हशे। मित्रों, घड़पण ए उमरनो एवो पड़ाव छे जेनामां नाना बाळकनी जेम जीववानी इच्छा थाय। क्यांक एवो कारण मळी जाय, यादोना शमणे पकरव अकारण पड़ी जाय। क्यांक एवो कारण मळी जाय, यादोना शमणे पकरव अकारण पड़ी जाय। न होय कोई शरत के फरियाद, न होय कोई शरत के फरियाद, बस एक एवो हृदय ने मुझने बाळपणनी विरासत मळी जाय। मित्रों, शब्दों समझवा जरूरी। बाळपणनी यादोना स्वप्न अकारण आवे छे, कारण बाळपणमां कोई शरत के फरियाद नथी।

आज मैं उस जमाने की बात करने वाली हूँ जिस जमाने में आप मैसेज नहीं किया करते थे। आप अगर किसी इंसान को मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो पत्र यानी कि लेटर्स का सहारा लेते थे। हाँ, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जिस जमाने में हम मोबाइल यूज नहीं किया करते थे लेकिन पत्र लेटर्स लिखा करते थे। तो चलो आज पत्रों से जुड़ी कुछ सुनहरी यादें मैं आपके सामने रखती हूँ। उस वक्त जब पोस्टमैन अपने घर आते थे उनके आने की खुशी कुछ और ही हुआ करती थी। बड़े से झोले में यानी कि उनके बड़े से थैले में सैकड़ों चिट्ठियां हुआ करती थी। जब वो आते थे तब हर कोई ये गाना तो बिल्कुल ही गाता था, डाकिया डाक लाया, और हाँ डाकिया आ गया है, ऐसा हर कोई ये कहकर उनको घेर लिया करते थे कि क्या उनका भी कोई संदेश आया है कि नहीं ये भी पूछा करते थे।

उस समय दो रंग के पोस्ट आया करते थे, एक तो नीला रंग और पीले रंग का। इस पोस्ट को एक बार पढ़कर मन बिल्कुल भी नहीं भरता था, क्योंकि हर शब्द दिल से जुड़ा हुआ लगता था। ऐसे शब्द को पढ़ते समय सामने वाले का चेहरा आंखों के सामने हुआ करता था और ऐसा लगता था कि वो इंसान आपके सामने है और आपसे बातें कर रहा है। कुछ ऐसा ही था वह चिट्ठियों को लेकर लिखने का दौर, जो आज कहीं गुमसा हो गया है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो चिट्ठी का जमाना कहीं खो गया है। ये गाना याद नहीं आता?

अब वो दौर तो आज के जमाने में खत्म सा हो चला है। अब तो पत्र लिखने का डे भी मनाया जाता है, जैसे कि 1 सितंबर, यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे।

वैसे तो अब चिट्ठियों का चलन नहीं है, वो दौर अब चला गया है जब चिट्ठियां लिखी जाती थी और पत्र व्यवहार हुआ करते थे। लेकिन वो लोग अभी भी है जिनके पास इतने सारे एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करना चाहते हैं। मैंने भी ऐसे ही कुछ लोगों से बात की जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। उनमें से एक ने बताया कि पुराने समय में चिट्ठी दिल से जुड़ी होती थी। उन्होंने बताया कि उनका मायका बहुत दूर है, पिता से हमेशा उनको जुड़ाव रहा था, लेकिन इसीलिए शादी के बाद जब ज्यादा वो चिट्ठी का इंतजार करती थी तो माँ के बजाय वो उनको इंतजार था अपने पापा की चिट्ठियों का, और पिता की चिट्ठी हफ्ते में दो बार अवश्य आया करती थी। उन चिट्ठियों को आज भी उन्होंने संजोकर रखा हुआ है एक संदूक में। जब भी उनको याद आती है अपने पिता की उनकी बातों की तो वो चिट्ठियां निकाल कर पढ़ लेती है। तब उनको यही लगता है कि उनके पापा उनके साथ बात कर रहे हैं।

जब बातें हो रही थी तब लगा कि चलो चिट्ठियों को लेकर और आज के डिजिटल युग को लेकर कुछ बात की जाए तो क्या अंतर रहेगा, क्या डिफरेंस आएगा। तब मैंने एक प्रोफेसर से भी बात की, कॉलेज प्रोफेसर है, और उनका ये कहना था पहले मोबाइल और फोन नहीं था, इसके कारण परिवार और दूर रहने वाले दोस्तों के बीच एक चिट्ठी ही सहारा हुआ करती थी। हर शब्द में ऐसा लगता था मानो वो व्यक्ति सामने उपस्थित होकर, यानी कि आपके सामने खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा है। वो फीलिंग आती थी, वो इमोशन आपको फील होते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया है, यानी कि मैसेज की जो रीत आ गई है, तब से ये इमोशन बयां करने वाली जो रीत है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अब तो अगर मैसेज आए तो इग्नोर किया जाता है, मैसेज आए तो अनसीन किया जाता है, या तो देख लिया जाता है, लेकिन उसके साथ इमोशन का कुछ लेना देना बहुत कम हो गया है।

जब वो फिल्म देखने जाते थे तो पूरी फिल्म की कहानी, फिल्म में कौन हीरो है कौन विलन है, फिल्म से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें वो चिट्ठी में लिखकर अपने माँ बाबा को पहुँचाते थे। अपने भाई से बड़े ही अच्छी तरीके से बातें किया करते थे। जो बातें वो बोलकर नहीं कह पाते थे वो चिट्ठियों के ज़रिए अपने भाई से कह दिया करते थे। अब तो वो सुनहरे दौर कहीं खो चुके हैं। इसके साथ ही दूसरी पुरानी बातें भी डिजिटल युग में गुम हो गई है ऐसा लगता है।

आपको क्या लगता है, क्या ये बातें कहीं गुम हो चुकी है? अगर ऐसा लगे तो आप भी लिख दीजिए एक पत्र, एक लेटर अपने उस प्रिय और अपने चाहने वाले उस शख्स के लिए जिसको आपको कुछ कहना है जो आप कह नहीं सकते, तो लिख दीजिए। भले ही उस पत्र को आप भेजे नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए। शायद आपको भी उस ज़माने का, उस दौर का वो हिस्सा समझ में आए।

गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस बड़े जबरदस्त एपिसोड में 80 की दहाई में, यानी कि 80 के दशक में जो है वो गाने जो जीते, वो गाने जो जीतते जीतते रह गए, जैसे कहते हैं ना विनर और रनर अप, तो जो पहला गाना है जो विजयी हुआ, अवार्ड मिला जिसे, वो गाना खयाम साहब ने बनाया, गुलजार साहब ने लिखा, किशोर दा ने गाया। और दूसरा जो बिल्कुल पीछे रह गया जरा सा, वो किशोर दा ने ही गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसका संगीत दिया और बख्शी साहब ने उसके बोल लिखे, आनंद बख्शी साहब ने। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप गाने सुनेंगे तो यकीनन बड़ा मज़ा आएगा। और ये तमाम गाने जो हैं कारवां क्लासिक के, ये सारेगामा कारवां के 5000 गानों का जो नया तोहफा है, उनमें से चुन के मैं लाया हूँ। अच्छा, खयाम साहब का ज़रा जिक्र करूँगा क्योंकि भाई विजेता उनका गाना हुआ था। वो दरअसल संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे, हाँ वो तो केएल साइकिल बनना चाहते थे। 10-11 साल की इनकी उम्र थी और ठान लिया था कि मुझे केएल साइकिल बनना है, क्योंकि साइकिल साहब की फिल्मों से ये खासे मुतासिर थे और इस चक्कर में घर से भाग भी गए थे, अपने चाचा जान के यहाँ पहुँचे थे ये सोच के कि भाई मुझे एक्टर बनना है, केएल साइकिल बनना है। लेकिन इनकी संगीत की शिक्षा वगैरह हुई और उसके बाद भी इनके मन में यही ख्याल था कि भाई आगे जाकर ये अभिनेता ही बनेंगे, लेकिन संगीत ने फिर इन्हें इस तरह से पकड़ा कि वो अभिनय का जो भूत है वो उतर गया और संगीत का जादू जो है वो चल गया। ऐसे और भी कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं आज इस एपिसोड में आपके साथ बांटे जाएंगे।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: हे, तुमने कभी किसी

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कुछ बड़े निराले गाने 80 की दहाई के। जी हाँ, एक है अवार्ड विनर और दूसरा जो है वो रनर अप हो गया, मतलब बस जीतते जीतते रह गया। उन गानों की जोड़ियां हैं आज के इस एपिसोड में। तो जिस गाने का मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, जो विजेता बना, वो दरअसल अमित कुमार साहब ने गाया, पंचम दा ने संगीत दिया, आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे। अब हैरानी इस बात की होती है कि अमित कुमार साहब को तो बहुत पहले 70 की दहाई में मौका मिल गया था, हाँ, और फिल्म बॉबी के गाने जो हैं ऐसा माना जा रहा था कि वो अमित कुमार साहब गाएंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देने वाले थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, अमित साहब जो रहे वो ज़रा घबरा से गए, वो मुंबई में ही नहीं थे, वो कलकत्ता चले गए कि नहीं नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा। और फिर मौका मिला था शैलेंद्र सिंह साहब को, हाँ, तो फिर वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में कुमार गौरव और विजेता पंडित स्टारर लव स्टोरी में अमित कुमार साहब की आवाज़ ने कमाल कर दिया था। हाँ, गाना भी आप समझ गए जो है, मैं चाहता हूँ इसे आप सुने। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारे गामा कारवां, जो 5,000 गानों का नया तोहफा है, उसमें से चुन के लाया हूँ। हाँ, तो बड़े चुनिंदा ये गाने हैं और कुछ बड़े निराले किस्से भी आपका इंतजार कर रहे हैं।

तो एक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े जबरदस्त गाने सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का जो नायाब तोहफा है उनमें से मैं चुन के लाया हूं। और आज की जो ये फहरिस्त है उसमें एक गाना जो है वो विजेता और दूसरा बस जीतते जीतते रह गया, और वक्त जो है वो 80 की दहाई का है। हाँ, 80 का दशक जो है उसकी उस दशक की फिल्में, उस दशक के गाने। अभी जो गाना, जो विजेता गाना है वो तो आप सुनेंगे, परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ, मजरू साहब का लिखा हुआ, आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया, यकीनन बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप सुनेंगे। लेकिन जो गाना रह गया, उस गाने की बड़ी दिलचस्प एक कहानी है कि लिखा तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने, और मतलब एक बहुत पहले लिख दिया था, और कल्याण जी आनंद जी ने फिर इस गाने का उपयोग किया फिल्म लावारिस। अब जब साहब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ, हाँ, तो बच्चन साहब ने अच्छी एक्टिंग तो करी थी, सारा काम बड़ा अच्छा ही था, लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान बच्चन साहब की शरीक हयात जया जी बड़ी नाराज़ हो गई थी। हाँ, इसके दो वर्जन हैं। जो गाना जीतते जीतते रह गया वो अलका याग्निक जी द्वारा गाया गाना रहा, और एक वर्जन अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में। तो जया जी इतनी खफा हो गई कि ये क्या, ये इस तरह के लिबास में और औरत के भेष में जो हैं अमिताभ बच्चन, इतने बड़े सुपरस्टार स्क्रीन पे ये काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया कि वो चली गई थी उठ के, इतना नाराज़ हो गई थी। लेकिन आगे जाकर स्टेज शोज जब अमिताभ बच्चन साहब और जया जी किया करते थे, तब इस गाने पे वो थिरकती हुई थी बच्चन साहब के साथ। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त ये किस्से हैं साहब, और वो गाना कौन सा वो भी आप समझिए। तो चलिए साहब, एक तो जीता हुआ गाना और एक जीतते जीतते रह गया गाना जो है वो ज़रा सुन लेते हैं।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में जो फहरिस्त है ये उन गानों की है जिसमें से एक विजेता और दूसरा जीतते जीतते रह गया। वक्त है 80s का, 80 की दहाई। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो गाना आप सुनेंगे वो विजेता गाना है, लेकिन बहुत पहले भी रियलिटी शोज तो नहीं कह सकते, पर हाँ टैलेंट हंट हुआ करते थे। आजकल तो बहुत रियलिटी शोज का मामला रहता है और एक से बढ़कर एक आवाज़ सामने आती है, बड़े मौके मिलते हैं। पर गुजरे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री अक्सर तलाशा करती थी कि एक नई आवाज़ मिले, है ना, और नए कलाकार भी मिले, इस तरह का हिसाब किताब होता था। तो मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट एक हुआ करता था, उस रेडियो कॉन्टेस्ट में दो आवाज़ें चुनी गई थी, एक पुरुष यानी कि महेंद्र कपूर साहब उनकी आवाज़ चुनी गई और एक महिला यानी कि आरती मुखर्जी। हाँ, तो आवाज़ें चुन तो ली गईं, लेकिन बहुत वक्त लगा आरती मुखर्जी को एक अवार्ड जीतने में। और एक बड़ा ज़बरदस्त गाना इन्होंने गाया, पंचम दा ने इसका संगीत दिया था, गुलजार साहब ने लिखा। हाँ, और ये गाना वाकई बेजोड़ है। और आरती मुखर्जी को जब ये अवार्ड मिला तो सबने ही बहुत तारीफ की कि अरे वाह, एक तो बड़ी मुख्तलिफ आवाज़ और गाना भी बड़ा ज़बरदस्त गाया। और जो गाना रह गया जीतते जीतते वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया। हाँ, तो ये दोनों ही गाने आप सुनिए, एक विजेता एक जो जीतते जीतते रह गया, या और कुछ बड़े जबरदस्त किस्से जो हैं वो आपका साथ यकीनन निभाते रहेंगे।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कुछ बड़े जबरदस्त गाने 80 के दशक के, 80 की दहाई के, एक विजेता और एक जो जीतते जीतते रह गया। और ये जो दो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दोनों एक ही फिल्म के हैं, एक ही गायक ने गाए हैं, किशोर कुमार। हाँ, संगीतकार तो यकीनन एक ही होंगे, पपीदा, लेकिन गीतकार अलग अलग। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक प्रकाश मेहरा, वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ गाना जीता और उन्हीं की फिल्म में अनजान साहब ने जब गाना लिखा, वो गाना जीते जीते रह गया। दोनों ही नॉमिनेट हुए थे, फिल्म शराबी। अच्छा, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में ये बात बड़ी दिलचस्प है, बतानी भी चाहिए। ये बनना चाहते थे कि भाई किसी तरह से मैं कहानीकार बन जाऊँ, फिल्मों में आऊँ, नाटक वगैरह करूँ, ये पूरा मामला था। लेकिन घर से मुखालफत होगी, ये डर था इन्हें। तो बिजनौर के ये रहने वाले, तो बिजनौर में इनकी जो, जिसे कहते हैं ना जनेऊ सेरेमनी जिसे कहा जाता है, जब वो हुई तो रिश्तेदार जो हैं वो कई पैसे, बहुत से पैसे देते हैं, नेक देते हैं ना, लिफाफे आते हैं ना, तो आजकल भी मिलते हैं। तो प्रकाश मेहरा साहब को वो लिफाफे मिले और उन्होंने वो पैसे वैसे ज़रा इकट्ठे करे और एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, उस वक्त बम्बई कहा जाता था, मुंबई है, मैं बम्बई जा रहा हूँ कभी ना वापस लौट के आने के लिए, और अपने वायदे पे ये कायम रहे। हाँ, तो फिल्में भी खूब बनाएं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, और एंग्री यंग मैन इनकी फिल्म से ही उठकर आया था, जंजीर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाते नजर आए थे। और प्रकाश मेहरा साहब को जो है उनका लिखा जो गाना है उसे अवार्ड भी मिला। गाना कौन सा है आप सुन लो, दूसरा गाना जो है वो ज़रा तड़कता भड़कता है, पहला गाना ज़रा संजीदा है। हाँ, सुनिए इस

સ્વસ્થ રહો, વ્યસ્ત રહો, સ્વસ્થ રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM. गौरव श्रीवास्तव के साथ और आज के इस बड़े जबरदस्त एपिसोड में 80 की दहाई में यानी कि 80 के दशक में जो है वो गाने जो जीते और वो गाने जो जीतते जीतते रह गए, जैसे कहते हैं ना विनर और रनर अप. तो जो पहला गाना है जो विजयी हुआ, अवार्ड मिला जिसे, वो गाना खयाम साहब ने बनाया, गुलजार साहब ने लिखा, किशोर दा ने गाया. और दूसरा जो बिल्कुल पीछे रह गया जरा सा, वो किशोर दा ने ही गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसका संगीत दिया और बख्शी साहब ने उसके बोल लिखे, आनंद बख्शी साहब ने. अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप गाने सुनेंगे तो यकीनन बड़ा मजा आएगा. और ये तमाम गाने जो हैं कारवां क्लासिक के, ये सारे गामा कारवां के 5000 गानों का जो नया तोहफा है उनमें से चुन के मैं लाया हूँ. अच्छा, खयाम साहब का जरा जिक्र करूँगा क्योंकि फिर विजेता उनका गाना हुआ था. वो दरअसल संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे. हाँ, वो तो केएल साइकिल बनना चाहते थे. 10-11 साल की इनकी उम्र थी और ठान लिया था कि भाई मुझे केएल साइकिल बनना है, क्योंकि साइकिल साहब की फिल्मों से ये खासे मुतासिर थे और इस चक्कर में घर से भाग भी गए थे. अपने चाचा जान के यहाँ पहुँचे थे ये सोच के कि भाई मुझे एक्टर बनना है, केएल साइकिल बनना है. लेकिन इनकी संगीत की शिक्षा वगैरह हुई और उसके बाद भी इनके मन में यही ख्याल था कि भाई आगे जाकर ये अभिनेता ही बनेंगे. लेकिन संगीत ने फिर इन्हें इस तरह से पकड़ा कि वो अभिनय का जो भूत है वो उतर गया और संगीत का जादू जो है वो चल गया. ऐसे और भी कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं आज इस एपिसोड में आपके साथ बांटे जाएंगे.

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कुछ बड़े निराले गाने 80 के दहाई के। जी हाँ, एक है अवार्ड विनर और दूसरा जो है वो रनर अप हो गया, मतलब बस जीतते जीतते रह गया। उन गानों की जोड़ियां हैं आज के इस एपिसोड में। तो जिस गाने का मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, जो विजेता बना, वो दरअसल अमित कुमार साहब ने गाया, पंचम दा ने संगीत दिया, आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे। अब हैरानी इस बात की होती है कि अमित कुमार साहब को तो बहुत पहले 70 की दहाई में मौका मिल गया था, हाँ, और फिल्म बॉबी के गाने जो हैं, ऐसा माना जा रहा था कि वो अमित कुमार साहब गाएंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देने वाले थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, अमित साहब जो रहे वो ज़रा घबरा से गए, वो मुंबई में ही नहीं थे, वो कलकत्ता चले गए कि नहीं नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा। और फिर मौका मिला था शैलेंद्र सिंह साहब को, हाँ, तो फिर वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में कुमार गौरव और विजेता पंडित स्टारर लव स्टोरी में अमित कुमार साहब की आवाज़ ने कमाल कर दिया था। हाँ, गाना भी आप समझ गए जो है, मैं चाहता हूँ इसे आप सुने। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारे गामा कारवा, जो 5,000 गानों का नया तोहफा है, उसमें से चुनके लाया। हाँ, तो बड़े चुनिंदा ये गाने हैं और कुछ बड़े निराले किस्से भी आपका इंतजार कर रहे हैं।

तो एक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े जबरदस्त गाने सारेगामा कारवां जो 5000 गानों का जो नायाब तोहफा है उनमें से मैं चुन के लाया हूं। और आज की जो ये फहरिस्त है उसमें एक गाना जो है वो विजेता और दूसरा बस जीतते जीतते रह गया, और वक्त जो है वो 80 की दहाई का है। हाँ, 80 का दशक जो है उसकी उस दशक की फिल्में, उस दशक के गाने। अभी जो गाना, जो विजेता गाना है वो तो आप सुनेंगे, परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ, मजरू साहब का लिखा हुआ, आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया, यकीनन बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप सुनेंगे। लेकिन जो गाना रह गया, उस गाने की बड़ी दिलचस्प एक कहानी है कि लिखा तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने, और मतलब एक बहुत पहले लिख दिया था, और कल्याण जी आनंद जी ने फिर इस गाने का उपयोग किया फिल्म लावारिस। अब जब साहब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ, हाँ, तो बच्चन साहब ने अच्छी एक्टिंग तो करी थी, सारा काम बड़ा अच्छा ही था, लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान बच्चन साहब की शरीक हयात जया जी बड़ी नाराज हो गई थी। हाँ, इसके दो वर्जन हैं, जो गाना जीतते जीतते रह गया वो अलका याग्निक जी द्वारा गाया गाना रहा, और एक वर्जन अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में। तो जया जी इतनी खफा हो गई कि ये क्या, ये इस तरह के लिबास में और औरत के भेष में जो हैं अमिताभ बच्चन, इतने बड़े सुपरस्टार स्क्रीन पे ये काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया कि वो चली गई थी उठ के, इतना नाराज़ हो गई थी। लेकिन आगे जाकर स्टेज शो जब अमिताभ बच्चन साहब और जया जी किया करते थे, तब इस गाने पे वो थिरकती भी थी बच्चन साहब के साथ। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त ये किस्से हैं साहब, और वो गाना कौन सा वो भी आप समझिए। तो चलिए साहब, एक तो जीता हुआ गाना और एक जीतते जीतते रह गया गाना जो है वो ज़रा सुन लेते हैं।

0: नाम है।
1: गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में जो फेहरिस्त है ये उन गानों की है जिसमें से एक विजेता और दूसरा जीतते जीतते रह गया। वक्त है 80s का, 80 की दहाई। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो गाना आप सुनेंगे वो विजेता गाना है, लेकिन बहुत पहले भी रियलिटी शोज तो नहीं कह सकते, पर हाँ टैलेंट हंट हुआ करते थे। आजकल तो बहुत रियलिटी शोज का मामला रहता है और एक से बढ़कर एक आवाज सामने आती है, बड़े मौके मिलते हैं। पर गुजरे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री अक्सर तलाशा करती थी कि एक नई आवाज मिले, है ना, और नए कलाकार भी मिले, इस तरह का हिसाब किताब होता था। तो मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट एक हुआ करता था। उस रेडियो कॉन्टेस्ट में दो आवाजें चुनी गई थी, एक पुरुष यानी कि महेंद्र कपूर साहब, उनकी आवाज चुनी गई, और एक महिला यानी कि आरती मुखर्जी। हाँ, तो आवाजें चुन तो ली गई, लेकिन बहुत वक्त लगा आरती मुखर्जी को एक अवार्ड जीतने में। और एक बड़ा ज़बरदस्त गाना इन्होंने गाया, पंचम दा ने इसका संगीत दिया था, गुलजार साहब ने लिखा। हाँ, और ये गाना वाकई बेजोड़ है। और आरती मुखर्जी को जब ये अवार्ड मिला तो सबने ही बहुत तारीफ की कि अरे वाह, एक तो बड़ी मुख्तलिफ आवाज़ और गाना भी बड़ा ज़बरदस्त गाया। और जो गाना रह गया जीतते जीतते वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया था। हाँ, तो ये दोनों ही गाने आप सुनिए, एक विजेता एक जो जीतते जीतते रह गया, और कुछ बड़े जबरदस्त किस्से जो हैं वो आपका साथ यकीनन निभाते रहेंगे।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कुछ बड़े जबरदस्त गाने 80 के दशक के, 80 की दहाई के, एक विजेता और एक जो जीतते जीतते रह गया। और ये जो दो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दोनों एक ही फिल्म के हैं, एक ही गायक ने गाए हैं, किशोर कुमार। हाँ, संगीतकार तो यकीनन एक ही होंगे, बप्पी दा, लेकिन गीतकार अलग अलग। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक प्रकाश मेहरा, वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ गाना जीता और उन्हीं की फिल्म में अनजान साहब ने जब गाना लिखा, वो गाना जीते जीते रह गया, दोनों ही नॉमिनेट हुए थे। फिल्म शराबी। अच्छा, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में ये बात बड़ी दिलचस्प है, बतानी भी चाहिए। ये बनना चाहते थे कि भाई किसी तरह से मैं कहानीकार बन जाऊं, फिल्मों में आऊं, नाटक वगैरह करूं, ये पूरा मामला था, लेकिन घर से मुखालफत होगी, ये डर था इन्हें। तो बिजनौर के ये रहने वाले, तो बिजनौर में इनकी जो, जिसे कहते हैं ना जनेऊ सेरेमनी जिसे कहा जाता है, जब वो हुई तो रिश्तेदार जो हैं वो कई पैसे, बहुत से पैसे देते हैं, नेक देते हैं ना, लिफाफे आते हैं, तो आजकल भी मिलते हैं। तो प्रकाश मेहरा साहब को वो लिफाफे मिले और उन्होंने वो पैसे वैसे ज़रा इकट्ठे करे और एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, उस वक्त बम्बई कहा जाता था, मुंबई है, मैं बम्बई जा रहा हूँ कभी ना वापस लौट के आने के लिए, और अपने वायदे पे ये कायम रहे। हाँ, तो फिल्में भी खूब बनाए, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, और एंग्री यंग मैन इनकी फिल्म से ही उठकर आया था, जंजीर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाते नज़र आए थे, और प्रकाश मेहरा साहब को जो है उनका लिखा जो गाना है उसे अवार्ड भी मिला। गाना कौन सा है आप सुन लो, दूसरा गाना जो है वो ज़रा तड़कता भड़कता है, पहला गाना ज़रा संजीदा है। हाँ, सुनिए इस गाने को, और ऐसे और भी कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्से, कुछ बड़े अनोखे गाने आप तक पहुँचते रहेंगे।